सब से हंसी, आके मेरी फिर उसकी आंखों से जा मिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नहीं पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो।

सबसे हंसी आके मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा बिच दूजे च गलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की।

हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्म बख्शीश एक हुक्म सदा पुआई है, हुक्म अंदर सबको बाहर को ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे ता हूं मैं कह ना।

असंख जप संघ पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरम पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वरिया न जावा एक बार, जो तुद भावै सही परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंत घोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गल वड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल पक खाए, असंख निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै सही भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख थाम, गम गम असंख लो, असंख है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजो वखाण, जिने लिखे ते सिर नाए, जे फरमाए तिव ते पाए।

ही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी है अमूल पंडार अमूल आव है अमूल ले जाए अमूल पाए अमूल आसमाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुर।

सोई सदा सच साहे साचा साची नाई हैप्पी उसी जाय जैसी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सिमाया जिन पाई कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई हुंदा संतोख श्रम पचोली ध्यान की करै विभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई

इस वेले फ्रीडम ते हर चीज विक्री ते है सारे घरेलू सामान ते 50% तक छूट प्राप्त करो। इस विच गलीचे, लाइटिंग, बिस्तर दी चादर, दीवार कला, शीशे अते होर भी बहुत कुछ शामिल हन। जल्दी करो, विक्री हुन चालू है सिर्फ फ्रीडम ते।